0: घरमा
1: ए हो र
0: पानी है पर्यो पान्धारेमा घामै लाग्यो बर्मा
1: साँच्चै
0: जता है।

वायनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड